प्रेम से बोलो प्रभु रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, प्रेम से बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय सीताराम।

ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरारे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Has your name in his heart, has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

0: 102.7 FM, आपका धर्म, आपका स्टेशन, रेडियो जागृति.
1: Your enchanted journey to beautiful dreams. Your Sundar Sapna on Radio Jagriti 102.7 FM.

श्री शैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

ईश्वर ने जो प्रकृति बनाई है उसमें न जाने कितनी चीजें हैं जो हमें कदम कदम पर शिक्षा देती हैं। उदाहरण के रूप में एक वृक्ष को ही ले लीजिए। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, धूप में खड़ा रहता है और लोगों को छांव देता है। आप वृक्ष को पत्थर मारिए तो वो बदले में फल देता है। एक नदी है, अपना पानी स्वयं नहीं पीती, उस पानी से न जाने कितने हजारों लाखों लोगों की प्यास बुझाती। तो हमें अपना जीवन एक वृक्ष की भांति बनाना है, एक नदी की भांति बनाना है जो परमार्थ के कार्य आए।

0: सत्य सनातन धर्म की जय। कहो एक बार अहे मित्रो, सनातन धर्म की जय हो। सीताराम ऑल। इन दिस हेरिटेज मंथ वी रिफ्लेक्ट ऑन द मेनी ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स हु जर्नीड द काला पानी 181 years ago, bringing with them the many cultures of our dharma that have propagated us to this very day. May Bhagwan blessings be with their atmas.
1: Pandit Kapildev Maharaj, happy Indian Arrival Day 2026. Jai Shri Ram.
0: Satya Sanatan Dharma ki Jai.